नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जगवाटे हैपनिंग अस्तो सदा मीयता।
1: नमस्कार, मी संगीतकार अविनाश चंद्रचूड।
2: नमस्कार, मी विश्वजीत जोशी।
1: आपण आम्हाला ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबईच्या FM रेनबो वाहिनीवर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं

0: Lovely Nikam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह

0: है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
2: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और

0: 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गयी। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में है। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपके साथ है आपकी दोस्त माला। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं कार्यक्रम मस्त मुंबई। आज हम आपको किसी मंजिल पर नहीं, एक एहसास में ले जाएंगे। बारिश की सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं आप? वो कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, बस खिड़की पर अपनी उंगलियां रख देती है और फिर चाय थोड़ी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। पुराने गीत और थोड़े अपने और मुंबई भी, जैसे इन गीतों को सुनकर मुस्कुरा जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज आप मुस्कुराएंगे हमारे साथ आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो 107.1 FM पर। सबसे पहला गाना आपकी दोस्त माला लेकर आई है आपके लिए, 1942 अ लव स्टोरी।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार मुंबई, आकाशवाणी मुंबई का एफ एम रेनबो 107.1 FM और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7। और आज आकाशवाणी पर

जी हाँ बिल्कुल, जब बारिश का पानी बरसता है तो कभी ये शोर नहीं करता, कभी कभी ये दिल को सुकून देने वाला सबसे बेहतरीन संगीत बन जाता है। और मुंबई की असली पहचान भी उसकी बारिश में दिखाई देती है। कहीं कोई छतरी साझा कर रहा होता है, कहीं कोई भीगते हुए मुस्कुरा रहा होता है, तो कहीं खिड़की के शीशे पर गिरती हुई बूंदें पुरानी यादों को धीरे धीरे जगा देती हैं। बारिश शायद इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि ये हर चेहरे से कुछ देर के लिए ही सही पर स्पीड को थोड़ा कम कर देती है। बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं, आवाज दिल में हो जाती है। कुछ मौसम सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तो अगर आज आपकी खिड़की के बाहर बारिश हो रही है तो एक पल के लिए मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए और उस संगीत को सुनिए जो बादल बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिना रच देते हैं हमारी तन्हा तन्हा जिंदगी में।

और आज आपका साथ देने के लिए जुड़ी हुई है आपकी दोस्त माला आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 FM पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। भूषण जोशी हमें सुन रहे हैं, जगह का नाम आपने नहीं बताया, विजेंद्र घटोल अकोला से, प्रणव शिंदे प्रकाश शिंदे के साथ जुड़ गए हैं, फिरोज सिगेनपुरिया हमें सुन रहे हैं अपने ग्रुप के साथ, रजनीकांत पाटिल वाडवन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और ये मैसेज है वासुदेवन का बदलापुर से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, और अंजू अंधेरी ईस्ट से हमें

सुन रही हैं श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत, आर्य राउत टिगरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज महोड़ भी हमें सुन रहे हैं, महेश बोहरा अजमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मौसम बहुत उमस और गर्मी भरा है और बादल भी छा रहे हैं, लेकिन कब बरसेंगे उनकी मर्जी। फिलहाल तो गानों की बारिश में हम भीग रहे हैं और बरसात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं समुद्र के किनारे, कभी तो लहर आएगी। और प्राची शिंदे भी हमें सुन रही हैं और कह रही हैं कि समुद्र की लहरों पर जब पानी बरसता है, मरीन ड्राइव का हर कोना भीगने को तरसता है। ये मुंबई की बारिश है जनाब, यहाँ आकर अजनबी भी इस शहर की मोहब्बत में बहकता है। सपनों के शहर में जब काली घटा छाती है, मुंबई की पहली बारिश एक नई उम्मीद ले आती है। भागती दौड़ती जिंदगी को जरा रोक कर हर थके हुए दिल को ये सुकून दे जाती है। और गुलाब गायकवाड़ संगमनेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गणेश पाटिल वाड़वन से सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे कहते हैं बारिश हर बार नई होती है, लेकिन उससे जुड़ी यादें जो है अक्सर पुरानी होती हैं। किसी को स्कूल से लौटते हुए भीगना याद आता है, किसी को खिड़की के पास बैठकर चाय पीना, तो किसी को किसी का साथ। शायद इसलिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, ये यादों की खूबसूरत जबान होती है। इसलिए भीगी भीगी यादों के साथ आज के इस छोटे से सफर को फिलहाल आपकी दोस्त माला देगी यहीं विराम, क्योंकि आप सुनेंगे ठीक 9 बजे बदलती रेडियो लहरें कार्यक्रम। सुप्रसिद्ध गीतकार, लेखक और प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी से शैलेश मालोरे की बातचीत। और आपसे ये वादा रहा आपकी दोस्त माला का कि बनी रहेगी आपके साथ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर 10:02 पर होगा कार्यक्रम नमस्ते भारत। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं हमारा खास कार्यक्रम बदलती रेडियो लहरें।
1: फ्रेंड्स, एफएम रेनबो 107.1 न्यूज ऑन एयर ऐप, आई एम शैलेश मालोदे in the studios, welcome you all for the listening pleasure of a treat which we are going to experience with none other than Prasun Joshi. Prasun Joshi is the chairman of Prasar Bharati, under which Akashwani functions, and of course in that sense Akashwani Mumbai, and he is very

0: well-known poet, writer, communication specialist, advertising professional, and he has been known for his songs, particularly in the film of Tare Zameen Par, as well as Three Idiots. And friends, he has been winner of Filmfare Best Lyricist Award three times, in 2007, 2008, and 2014. And he was awarded a National Film Award for Best Lyrics in the year 2007 and 2013. And he won Cannes Lion Gold Award in 2003. And he was former chief executive of the global marketing firm McCann Erickson. And he was appointed once upon a time as the chairperson of the Central Board of Film Certification. And now he is heading Prasar Bharati for now. And friends, it has been an honor to welcome a creative person like Prasun Joshi and have a discussion in which we all are going through the changing, chaotic, and becoming more and more chaotic and opportunity-full mediascape, and its challenges because of the advent and the prominent use of AI, or rather artificial intelligence, and its impact on the creativity as we know. And creative person like Prasun Joshi is in the best person to ask the doubts which we have lingering in our minds for a certain time regarding the AI and its impact on the aspiring creative capital of the world, India, and particularly in the respect of the radio programs too. So friends, let's begin talking with Prasun Joshi. Sir, at the outset, what you would like to say that what needs to be done to understand our listener and their requirement for the entertainment, music, creative satisfaction?
1: हम इस बातचीत को दोनों भाषा में रखेंगे ताकि जैसे भी ये स्वाभाविक उसका फ्लो रहेगा.
0: सही है सर.
1: जब ये सवाल आप पूछते हैं, हम लोग सर्वाइवल मोड में हैं. Everybody is in a survival mode. This is not a unique question for radio or you or me or anyone else. It's, first of all, देखिए परिवर्तन है, change है. Change is the only constant. और जो सृष्टि का नियम है, बदलाव, लगातार बदलाव से
2: लगातार बदलाव.
1: आप हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं हैं कि अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी आला. तो अपने युग में तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे युग में जो काम होता था, आज की जनरेशन क्या समझे. कहाँ कविताएं समझते हैं वो, कहाँ म्यूजिक समझते हैं वो, सबको एक नॉस्टैल्जिया रहता है. और परिवर्तन जो है वो सतत होता रहता है. यू डोंट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस.
2: यस सर.
1: व्हाई डू यू डोंट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस? बिकॉज जिस पानी में आपने पैर डाला था पहले, वो पानी अब बह चुका है. वो अतीत का हिस्सा बन चुका है. वो आपकी स्मृति का कोष बन चुका है. आपकी स्मृति में कहीं है लेकिन वो बह चुका है. सो ये मानना कि परिवर्तन से समाज पहली बार गुजर रहा है या पहले कभी नहीं, विश्व ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, सो ऐसा कुछ नहीं. परिवर्तन हमेशा होता है. एवरी एरा में क्रिएटिविटी रही है. आप पाषाण युग की बात करें, द केव मैन, यू गेट केव आर्ट.
2: राइट सर.
1: उस वक्त की बात है, देखिए जिसे भित्ति चित्रण कहते हैं. यू गो इन टू केव आर्ट, यू गो इन टू ओल्ड केव्स एंड यू फाइंड लॉट ऑफ ग्रेट ड्रॉइंग्स.
0: सर हमारे कोकण में तो उसको हम सड़ा बोलते हैं, प्लेटू, उसके ऊपर भी आर्ट है सर. पेट्रोग्लिप्स.
1: बिल्कुल. तो देखिए आप वहाँ पर भी आर्ट है. आप गाँव में चले जाएँ, फोक आर्ट होता है, वर्ली आर्ट है आपका. जहाँ से मैं आता हूँ उत्तराखंड में चले जाएँ, वहाँ ऐपड़ करके आर्ट होता है. महिलाएं जो अपने दरवाजों पे, जहाँ पे आज वेलकम मैट रखी होती है, बड़ा आसान है वेलकम मैट डाल दो आप, लेकिन वो हाथ से गेरू से बनाती थी, चावल और गेरू से वो बनते थे. उस युग में भी क्रिएटिविटी थी और उसके बाद आगे बढ़ी. लेकिन क्रिएटिविटी के कारण और उसके एक्सप्रेशंस अलग अलग थे. उसके बाद आप आगे आइए इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, तो क्रिएटिविटी का फॉर्म साइंटिफिक हो जाता है. आप इंजन बनाने लगते हैं, भाप इंजन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी का बहुत अलग रूप आपको दिखाई देता है. वो भी सब क्रिएटिविटी ही है. रेनेसों में आप आते हैं, रेनेसों टाइम जिसे कहते हैं, उसमें आप यू सी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग वर्क. बड़े बड़े पेंटर्स हुए हैं यूरोप के उस समय. वो
2: लियोनार्डो दा विंची है, माइकल एंजेलो है.
1: बिल्कुल. अब ये सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ चल गया उसमें धीरे धीरे. लेकिन आप देखिए बदलाव या कोई ना कोई तरीके से वो क्रिएटिविटी आती रहती है. और आज के युग में हम AI

0: हैविंग सेड ऑल दैट व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, एक महत्वपूर्ण बात जो याद रखने की है, ये एआई का जो युग आया है ये थोड़ा अलग तो है, इसको सिर्फ एक तकनीकी इंटरवेंशन कहकर आप दरकिनार नहीं कर सकते।
1: सर इसमें आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि एक अलग युग है सही में, और आप एक क्रिएटिव पर्सन रहे हैं, और एआई के साथ कई लोगों को दिक्कत यही है कि क्या एआई क्रिएटिव है या वो ह्यूमन क्रिएटिविटी पर और जिसको रीपैकेजिंग कहते हैं वो करेगा।
0: देखिए, क्रिएटिव तो मेरे हिसाब से हम में से कोई भी नहीं ना, कोई भी कोई कोई क्रिएटिव हुआ है। क्रिएटिव तो एक ही था, वो था इस विश्व को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला। वी ओनली हैव अ वेंटेज पॉइंट। अब मैं बताता हूँ वेंटेज पॉइंट से मेरा क्या मतलब है। एक नदी बह रही है, उस नदी में तैर रहा है और लहरों के विपरीत तैर रहा है, उस व्यक्ति से आप ये पूछें नदी का क्या रूप है तो वो क्या कहेगा कि ये नदी बड़ी आक्रामक है, बड़ा इसमें प्रवाह है, फोर्स है। यही सवाल आप उस व्यक्ति से पूछिए जो उस नदी के तट पर बैठकर ध्यान लगा रहा है कि नदी कैसी है, वो कहेगा ये नदी शांत है। नदी वही है, न इसने नदी बनाई है न उसने नदी बनाई। नदी के प्रति जिसे आप वेंटेज पॉइंट कहते हैं, जी किस दृष्टि से आप उसको देख रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी में आप मूलतः एक अनुभूत सत्य को, एक फेल्ट ट्रूथ व्हिच यू हैव फेल्ट, उसको आप एक्सप्रेशन देते हैं। एआई को समझने के लिए, ये तो ह्यूमन है, तो मैंने जैसे पहले कहा कि क्रिएटर तो एक ही था, हम बाकी सब कॉपी आर्टिस्ट हैं
1: बिल्कुल
0: एक तरह से, तो बुलाने वाला एक ही था। हमने जो अपने एक्सप्रेशंस दिए हैं वो डेटा के फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। वैसे भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी रचना पूर्णतः मेरी है। इसको थोड़ा एलेबरेट करता हूँ। मैं तो वैसे भी ये मानता हूँ कि मैं स्वयं को कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मानता, मैं समझता हूँ मैं वायर हूँ। मेरे माध्यम से वो इलेक्ट्रिसिटी आती, वो इलेक्ट्रिसिटी मैं स्वयं को नहीं मानता। मैं इसके लिए स्वयं को बड़ा लकी मानता हूँ कि मेरे माध्यम से वो हुआ। उदाहरण देता हूँ, आपने एक फिल्म मेरी देखी होगी तारे ज़मीं पर,
1: कई बार देखिए
0: जी उसका भी सेलिब्रेशन परसों था, भी मैं पूरी टीम के साथ था, मैं आमिर और सबके साथ। तो वो इस गीत पर मेरी चाह रहे थे कि मैं कैसे, तुझे सब है पता है ना मालिक। तो मैंने कहा भाई देखिए, फिल्मों की स्क्रिप्ट में लिखा होता है दिस प्लेस दे विल बी ए सेपरेशन सॉन्ग, इतना ही लिखा होता है उसमें। तो आपको सोचना होता है कि क्या करें, सेपरेशन सॉन्ग तो कुछ भी हो सकता है, कि तुझसे बिछड़ के कहाँ जाऊँगा माँ, बिखर जाऊँगा माँ, हो सकता था। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो मुझे महसूस होता है स्वयं। तो मैं अपने बचपन में चला गया और मुझे याद आया मेरे माता पिता शिक्षक थे, मेरी माँ शिक्षकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें वो जा रही थी, और ये पहली बार था कि मैं अपनी माँ के बिना रहने वाला था। तो मैंने उसी भावना का हाथ थामा और उसी को कलमबद्ध किया, उसी को लिखना शुरू किया। और मैंने पहले ये लाइनें लिखी

0: तुझे सोचूं यही, तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।
1: अब ये भावना उत्पन्न हुई एक अनुभूत सत्य से, ट्रूथ से जो मुझे पता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये लोगों तक कितना उनको ये अपना अनुभव लगेगा, लेकिन मुझे ये पता था कि ये सत्य है, ये ऑनेस्ट है, ये ऑथेंटिक है, और उसी की उंगली थाम कर और वो आपने वो लिखा। अब इसका श्रेय पूरी तरह मैं जो कह रहा था कि मुझे मिल जाना चाहिए, कि मेरी माँ को भी मिलना चाहिए, या उस परिस्थिति को भी मिलना चाहिए, उस वातावरण को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। आप तो निमित्त बन गए उसके, आप उस भावना को सामने लेकर आए, लेकिन उस भावना में सो जब आप कहते हैं कि एआई अपने आप क्रिएट करेगा या लेगा, हम अपने आप क्रिएट करते ही कहाँ हैं, सबका तो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी लेते हैं। तो अब एआई जो करेगा उसमें आपका एल्गोरिदम आपका

0: किया हुआ एक्सपीरियंस को वो चार के जोड़ करके पांचवा बनाएगा और ये होता चलेगा हमेशा। और ये हम भी करते हैं, हमारा मस्तिष्क भी ये करता है कि कहीं कुछ सुना था, कहीं कुछ देखा था, उससे हमारे कुछ इमेजेस बनती हैं, वो इमेजेस को हम फिर रूप देते हैं और वो क्रिएटिविटी बन जाती है। सो एआई कुछ ऐसा नहीं करेगा जो हम नहीं करते, लेकिन एआई जो करेगा उसका श्रेय हमें नहीं मिलेगा। अब ये बात है। तो अब ये चीज़ है कि उसको हम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं।
1: और ये आपने एआई का जिक्र किया कि इसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, और ये एआई का जो चैलेंज है, दिस चैलेंज इज नाउ राइट ऑन द डोर्स ऑफ अस एज ए मीडिया। इन दिस सिनेरियो हाउ शुड वी अप्रोच फॉर द प्रोग्राम विच विल अट्रैक्ट ह्यूमंस?
0: देखिए, एआई को तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहना ही नहीं चाहिए। एआई इज नॉट आर्टिफिशियल। What is artificial about it? It's all human experiences which have been converted into data. So AI ने कुछ अपने मन से तो नहीं बनाया, हमारे ही अनुभवों का डेटाकरण किया गया है और वो डेटाओं को यूज करके करा, तो आर्टिफिशियल क्या है, सब कुछ रियल है। देखिए, मेरा एक मानना है कि हम लोगों की जो क्रिएटिविटी इंसान की जो आती है, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी है, वो अव्यक्त से आती है। अव्यक्त मतलब जो कहा जा चुका है वो बन गया डेटा, सही, और सबसे सुंदर गीत तो अभी तक लिखा ही नहीं गया, उसका डेटा कहाँ है?
1: बिल्कुल सही।
0: और सबसे सुंदर ख्वाब तो अब तक देखा ही नहीं गया है, तो उसका डेटा कहाँ है? वो आपके अंदर अव्यक्त है, अनएक्सप्रेस्ड है, एंड द रीजन इट इज अनएक्सप्रेस्ड इज व्हाट इज गोइंग टू बी द ह्यूमन स्ट्रेंथ। जो अव्यक्त है, द वन विच इज येट टू कम, इज इन यू, रिजाइड्स इन यू। दैट इज द रीजन आई वुड ऑलवेज से we will have something more than what AI can offer. Very well, take cognizance of the way AI is going to redefine creativity. Kal ko creativity ka matlab ye nahi hai, aapka jo process hai, the process is going to be truncated, the process is going to be reduced. Aapke jo pura jo prakriya hai na uski, wo kafi kam ho jayegi, choti ho jayegi. Or the creator will have to make a choice. Choice will be called creation. To aapke samne panch kritiyan rakhi hongi. आपने प्रॉम्प्ट दिया होगा, प्रॉम्प्ट देने वाले अब भी आप ही होंगे, लेकिन आफ्टर योर प्रॉम्प्ट वहाँ पांच रचनाएं बनी, पांच में से आपने कहा ये पांचवी जो है ये मेरी है, ये सही लग रही है। तो यू विल बिकम मोर ऑफ अ चॉइस मेकर देन द क्रिएटर। ये सारे डिफरेंसेस, नुएंस डिफरेंसेस आएंगे, और इस सबसे ओवरवेलम ना हो करके पहले तो टेक्नोलॉजी को समझ लें, और विशुद्ध रूप से इंसान की जो एक स्वाभाविक उसकी जो क्वालिटी है कि वो अनंत से जुड़ा है, असीम से जुड़ा है, वो फक्र अपने आप पे कभी ना छोड़े, उसके बाद वो आपके लिए एक टूल बन के रह जाएगा। अभी वो टूल नहीं है, वो काफ़ी टूल से ज़्यादा पावरफुल है। एंड एआई इज अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है हमारे आविष्कारों में, क्योंकि एक आविष्कार नहीं है। देखिए, आप एक गाड़ी चलाते हैं, एक मशीन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एआई एक मशीन नहीं है। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आपको पता है ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, इट्स ए टूल किट, आपने सीख लिया। अब आप दूसरे दिन या तीसरे दिन उस गाड़ी में जाते हैं तो वो चीज़ें वैसी रहती हैं। एआई में ऐसा नहीं, एआई प्रतिक्षण बदल रहा है। आज जो आपने सवाल पूछा और उसका रिस्पांस मिला, कल आप देखेंगे वो रिस्पांस उससे बेहतर रिस्पांस होगा या उससे डिफरेंट या मुख्तलिफ रिस्पांस होगा। एंड दैट इज़ वाई एआई इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ऑर्गेनिकली द वे वी इवॉल्व। वी विल हैव टू कम टू रिदम एंड विद इट एंड रियलाइजेशन टू इट दैट दिस इज नॉट समथिंग विच वी हैव सीन बिफोर। ये एक ऐसी मशीन नहीं है जिसको मैं एक बार समझ लूँ तो उसके बाद समझ लूँ, ऐसा नहीं है। ये उतनी ही बड़ी गुत्थी है जितनी बड़ी गुत्थी जिंदगी है।
1: यह आपने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब हमें रेडियो प्रसारक के रूप में अगर अपने आप को मर्यादित करें तो किस तरह से हमें अप्रोच करना पड़ेगा शायद इन सब चीज़ों की ओर?
0: पहले को तो रेडियो को रेडियो समझना बंद कर दीजिए। सबसे पहले क्या होता है, यू गॉट टू वर्क ऑन द बेसिक्स। ये जिद थोड़ी है कि आप मुझे रेडियो कहें, मत कहिए रेडियो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, अपने को उन सीमाओं से मुक्त कर लीजिए। आपका काम क्या है, आप रेडियो के मूल पर जाइए, वो देखिए वो क्या करता है, उस पर जाइए कि वो डब्बे में बंद रेडियो होगा, उसमें एक नॉब होगा जिसके कान उमेटना आवश्यक है, ऐसी लिमिटेशन से बाहर निकल जाइए। रेडियो का जो मूल स्वरूप है कि मैं दिल तक, लोगों तक एक तरह से प्रसार के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से कनेक्शन ढूंढता हूँ। तो अगर आप कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो उस कनेक्शन को मूल में रखिए, और उस कनेक्शन को

0: स्पून में रख के जो उसके चारों पैराफिनिलिया है उस पैराफिनिलिया को मोल्ड कीजिए टूवर्ड्स व्हाट वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, जहाँ दुनिया जा रही है, जिस तरह से दुनिया सुन रही है
1: स्टोरी टेलिंग।
0: हाँ, कोई ज़रूरी तो नहीं है, लोगों ने चेंज करना शुरू कर दिया ना कि खाना कैसे खाते थे पहले। अब पहले ज़मीन में बैठ के पालथी मार के, मुझे तो याद है मैं गाँव में जाया करता था अपनी नानी के पास, तो चूल्हे पर रोटी बनाती थी और एक पटला लेकर मैं बगल में बैठता था और वहीं से वो निकाल के मुझे देती थी। तो अब वो चूल्हा नहीं रहा पर मेरी भूख तो ख़त्म नहीं हुई ना, अब भी मैं खाना खाता हूँ और अब भी वही रोटी खाता हूँ। लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है घर का खाना।
1: रेस्टोरेंट में घर का खाना
0: देख लीजिए, विडंबना देख लीजिए। तो इसका मतलब नीड आपकी ख़त्म नहीं हुई। तो जो रेडियो जिस नीड को फुलफिल करता था वो तो है, अगर उस पर हम ध्यान दें और ध्यान दें कि ठीक है वो पॉकेट रेडियो वो एक नॉस्टैल्जिया का पार्ट है, लेकिन आज जिस तरह से वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं उस कंजम्पशन मॉडल में जो मेरे पास है जो मैं दे सकता हूँ वो तो क्रिएटिविटी है और वो असीम है। उसका स्रोत जो है वो अपने आप को हरेस्ट महसूस न करे। जो व्यक्ति गांव में महफिलें होती थी गाता था, आज भी हम लोग स्टूडियो में बुलाते हैं, ऐसा तो नहीं कि लोगों ने माइक का यूज़ करना शुरू नहीं किया, उससे पहले तो लोग नहीं माइक होते थे, पेड़ के नीचे चार लोग गा रहे हैं उनकी महफिल चल रही। अब आपने देखा कि धीरे धीरे भाई रेडियो भी तो एक बदलाव ही था ना।
1: बिल्कुल,
0: उस बदलाव से भी तो लोग जुड़े।
1: yes.
0: फिर दृश्य श्रव्य दोनों आ गया, फिर टीवी आ गया, फिर इंटरनेट आ गया। लेकिन अगर आप उसके मूल में जाते हैं तो ये ज़रूरत है वही है। आपको एक डाकिया चिट्ठी ला करके देता, आप बड़े इंतज़ार करते थे कि मेरे प्रिय का पत्र आएगा, क्या लिखा होगा, और आप कप कपाते हाथों से वो लेटर खुलते थे, पढ़ते थे। अगर आप आज वो लेटर नहीं आ रहा है, वो ईमेल आ रहा है, उस ईमेल को क्लिक करने में आपकी उंगलियां अभी नहीं कप कपाती हैं। वो भावना वही है, पहले वो कागज़ फड़फड़ाता था अब कर्सर डगमगाता है, लेकिन मूल भावना प्रेम की वही है। मोड बदल गया, टाइप बदल गया। जब हम वो समझ लेंगे तो हमें लगेगा कि हमें उस तरह की प्रोग्रामिंग करनी चाहिए कि धड़कने जो मैं बढ़ाता था वो बढ़ाता रहूं। और ये ना समझूं कि जब हम वहां पहुंच जाएंगे जहां धड़कने नहीं होंगी, भावनाएं नहीं होंगी, तब हम एक ऐसे संसार की कल्पना कर रहे हैं, उस पर मैं आपके साथ दूसरा डिस्कशन करूँगा, कभी और करेंगे। द वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस विल बिकम अनइम्पॉर्टेंट और भावनाओं का कोई अस्तित्व नहीं हो रह जाएगा और मानव का इतना मशीनीकरण हो जाएगा कि मानव जो है एक तरह का एक विचित्र प्राणी सा बनकर साइड में बैठा होगा। दैट इज अ डिस्टोपियन व्यू ऑफ द वर्ल्ड विच आई एम राइट नाउ नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि रेडियो को स्वयं को पुनर्भाषित करके अपने अंदर से आत्मविश्वास पैदा करके आगे बढ़ना।
1: धन्यवाद सर,
0: बहुत बहुत।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। अभी आप सुन रहे थे प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी से सैलोश मालोरे की बातचीत कार्यक्रम बदलती रेडियो लहरें के माध्यम से।

0: जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक

घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4थी लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: लेकर आते हैं हम जज्बातों के नए रंग।
1: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
0: जो छू लेते हैं आपका मन।
2: मगन बस तेरा नाम दोहरा,
0: हर आरजी का है एक अलग ही रंग।
2: ओ रंग रे
0: क्योंकि यहाँ से हम लेकर आते हैं बातें दिल से, जो पहुँचती है आपके दिल तक, ओनली ऑन FM रेनबो।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 10:24। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाने का आदेश दिया है। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली TET की परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया है, इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान में की गई चांदी की ईंटों को और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को

शून्य से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में फिलाडेल्फिया में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, ये है आपका अपना आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM, जिसका प्रसारण आप सुन पाते हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर तो आप हमें 24/7 कहीं भी सुन सकते हैं, पूरी धरती पर जहाँ भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप के माध्यम से आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो ये है FM रेनबो मुंबई 107.1 FM और कार्यक्रम है नमस्ते भारत, वो बातें जो मेरे दिल की है वो आज हम आपसे करेंगे आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। साथ रहेगी आपके आपकी दोस्त माला। तो भाई, दिल की ये जो अनकही बातें हैं जो कभी जोर से नहीं कही गई, दिल के किसी कोने में दबी रह जाती हैं और कभी भी होठों तक नहीं आ पाती, वो बातें जो शोर में नहीं सिर्फ खामोशी में सुनी जा सकती हैं, आज नमस्ते भारत में हम उन अनकही अनसुनी और अनबोली यादों के पन्ने खोलेंगे जो जोर से तो नहीं कही गई लेकिन जिनकी गूंज आज भी हमारे दिल में सबसे गहरी है।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलो हर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुनते हैं 24/7। कॉलेज के साथ गांव की लड़कियों को मुफ्त ऑनलाइन पढ़ाई, जो कहते हैं कि दिया खुद जला कर दूसरों को रोशनी देना, लेकिन निहारिका जैसी बेटियां वो रोशनी है जो पूरे समाज को जगमगा देती हैं। खुद कॉलेज की पढ़ाई करते हुए शहर के एक कमरे से इंटरनेट के जरिए गांव की उन लड़कियों को सपनों के पंख लगा देना जिन्हें चूल्हे चौके से आगे देखने की कोई इजाजत नहीं थी, और निहारिका की ये कोशिश महज तालीम नहीं एक खामोश इनकलाब के जैसी है, जिसकी वजह से गांव में रहने वाली जो बच्चियां हैं वो पढ़ पा रही हैं। और हमारे दिल की बात ये कहती है कि निहारिका जैसी और भी लड़कियां अगर आगे आएं तो फिर बहुत सारी बच्चियों को दिशा मिल जाए और वो भी जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं।

प्राची शिंदे ने इस गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है, कलम हाथ में लेकर वो इतिहास बनाएगी, पढ़ लिख कर बेटी अब नए आसमान छुएगी, अब न बांधो उसे बंद बंदिशों के साए में, वो अपने दम पर अपनी तकदीर खुद बनाएगी, ऐसा लिख भेजा है हमें प्राची शिंदे ने और फरीफ फिल्म के इस गाने की फरमाइश की है। एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम कार्यक्रम नमस्ते भारत मेरा दिल मेरी बातें साथ बनी हुई लगातार आपके आपकी दोस्त माला और मेरा दिल मेरी बातें में अब हम आपको बताएंगे पिता और बेटे के बीच चुप्पी तोड़ने वाली भावुक बातचीत। जब एक घर में रहकर भी कभी कभी पिता और बेटे के बीच मीलों का फासला आ जाता है, वो सम्मान की दीवार, वो कड़क आवाज के पीछे छुपा पिता का असीम प्यार और बेटे की झिझक। लेकिन जब उस चुप्पी की बर्फ पिघलती है ना, तब एक बेटा पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि पापा मैं समझता हूँ, तो वो सिर्फ बातचीत नहीं होती, वो दो अलग अलग विचारधाराओं, दो अलग पीढ़ियों का मिलन होता है और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो कुछ ऐसा होता है।

जीने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर. और आज हमारे पास वैसे तो हजारों फ्रेंड्स हैं, लाइक्स भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, स्क्रीन पर उंगलियां भी चलती हैं, तो दिल की धड़कनें जैसे थम सी जाती हैं. हम वर्चुअल दुनिया में तो हर पल जुड़े रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी के आंगन में हमेशा तन्हा खड़े रहते हैं. हम वाईफाई से तो कनेक्ट हैं, पर जज्बातों से डिसकनेक्ट हो चुके हैं. तो भाई, मेरा दिल मेरी बातें यही कहती है कि इन सब चीज़ों से जुड़े रहिए, लेकिन जिनसे असली में जुड़ना है उन्हें बिल्कुल मत छोड़िए और उनके साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए. आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर बहुत सारे लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें विक्रम अठावले और विद्या अठावले मिरज से हमारे साथ शामिल हैं, आर्यन सोमवंशी, गुलाब गायकवाड़ संगमनेर से श्रीधर मुजारकर, ममता महेश भाटकर, कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है, प्रदीप अनंत कृष्णन कह रहे हैं कि भाई भूतकाल के सब पन्ने जो हैं वो भरे पड़े हैं जिसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य के सब पन्ने बिल्कुल कोरे हैं जिस पर आप चाहे जो चाहे लिख सकते हैं. और श्रीनाथ जाखड़े भी हमारे साथ जुड़े हैं, कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है, प्राची शिंदे और रजनीकांत पाटिल वाड़वन से हमें सुन रहे हैं, शुभ लक्ष्मी मस्तकार कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, संदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं. और संदीप जी, संदीप मक्कड़ हैं ये, और ये जालंधर से ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से सुन रहे हैं हमें, और आपकी पसंद का गाना जो है वो हम ज़रूर प्ले करेंगे. और प्रणव शिंदे जो हैं वो भी सुन रहे हैं, मानखुर्द से प्रमोद चिंचोलकर, आदर्श कनौजिया, पंकज महोड, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो मुंबई 107.1 FM पर. और हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ आपको अपनों से भी जुड़ना है, क्योंकि छुट्टी का जो दिन होता है वो सभी के लिए होना चाहिए.

0: जिलो थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जिलो थोड़ा।

घड़ी की सुइयां भाग रही हैं और हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन। कहते हैं महीने गुजर जाते हैं, हम सब ऐसा ही कहते हैं। मुझे डर इस बात का नहीं कि वक्त कम है, डर तो इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हमारे पास दुनिया भर के लोग तो हों लेकिन उनके साथ निभाने के लिए कोई सच्चा रिश्ता ना रहे। तो इसलिए रिश्ते निभाते रहिए। और वही हम आपसे कह रहे थे कि वर्चुअल वर्ल्ड में जब हम घुस जाते हैं तो अपने रिश्ते कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो वो रिश्ते हमेशा बने रहे ऐसी कोशिश कीजिए, और जो रिश्ता आपका हमारे साथ है वो भी बना रहे ऐसी हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह बड़े प्यार के साथ हमारे तक पहुंचते रहें, आपके मैसेजेस हम तक पहुंचते रहें। फिलहाल इस घंटे से तो आपकी दोस्त माला इजाज़त लेगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी से नहीं, आपके दिलों में हमेशा जगह बनी रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। और फिर होगी मुलाकात आपसे, लेकिन आप बने रहिए तब तक FM रेनबो 107.1 FM पर। छोड़ जा रही हूँ आपको इस खूबसूरत से दिल से जुड़े हुए नगमे के साथ, जिसे मैंने उठाया है फिल्म हिना से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कार्यक्रम मन की बात में, जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक

विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है।
प्रधान

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा।
हजारों

ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी
इस

शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों

का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें

0: कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 11:35 हो चुके हैं ब्रेक फ्री के साथ। मैं हूं ममता सहगल, आपके साथ साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं हमारे प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर, बिल्कुल लाइव हमारे मुंबई स्टूडियो से। ढेर सारी बातें करनी है आपसे, ढेर सारी बातें बतानी है आपको। अगले घंटे म्यूजिक कैफे में भी कुछ खास गीतों की छिपी हुई कहानी आपको बताऊंगी, लेकिन उन सब के लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार।

जिंदगी में सबसे खुश नसीब होता है। अगर आपको भी कभी किसी का सच्चा प्यार मिले तो उसे समेट लीजिएगा अपने पास, अपने से दूर मत जाने दीजिएगा, क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। वेलकम बैक 107.1 FM रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर में, कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री। और अब से कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे मन की बात, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने और जानने के लिए मिली। वैसे आज मेरे पास पिटारे में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं आपको देने के लिए जो मैं इंतज़ार ही नहीं कर पा रही हूँ आपको देने का। लेकिन भाई कहते हैं कि जो मज़ा इंतज़ार में है वो तो दीदारे यार में भी नहीं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?

नजरों में प्यास दिल में तलाश हो तो हमें बहुनर में चुनरी में दाग सी नहीं मैं आग सांसों में कह दे गर्मी।

बिजली खड़ी है कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पंकज माहौर जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, महेश बोहरा जी, विजेंद्र घटोल जी, प्रणव शिंदे जी और राजेंद्र परमार जी, रजनीकांत पाटिल जी, आप सब जरूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह से। अंजू जी अंधेरी ईस्ट से, आप सब हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं सुबह से, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गाने एंजॉय कर रहे हैं, अपने मैसेजेस हाय हेलो नमस्कार सब हमें भेज रहे हैं, आप अपने दिनचर्या का हाल भी हमें भेज रहे हैं। देखकर इतनी खुशी होती है, जानकर इतना सुकून मिलता है कि कोई है जो हमसे दिल से इतना प्यार करता है। वैसे आपको बता दें कि ठीक 12 बजे आप सुनेंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से, समाचारों के उस पार म्यूजिक कैफे में मैं रहूंगी आप के साथ करने के लिए बातें बेशुमार। फिलहाल आपके लिए एक खूबसूरत सा गीत मैं प्ले करने वाली हूँ यहीं पर, तो थोड़ा पुराना सा गीत है, 90s का गाना है एंड आई एम श्योर आपको पसंद ज़रूर आएगा। विनोद राठौर की आवाज़ है और इसमें जो गोविंदा ने कमाल किया है, चाहे एक्सप्रेशंस ले लो, चाहे डांस ले लो, और साथ में करिश्मा कपूर ऑफकोर्स। तो चलिए आइए सुनते हैं ये गीत।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव मुंबई स्टूडियो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि आने वाले गणेश उत्सव में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बजाय स्थानीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई मिट्टी की गणेश मूर्तियां प्रस्थापित करें। आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन्होंने कहा कि इससे हमारी नदियां, तालाब और पर्यावरण की रक्षा होगी और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व पूरा होगा। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम टूटने के बाद पश्चिम एशिया में सुरक्षा की स्थिति में तीव्र गिरावट आई है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान ने एक ड्रोन में से एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। समाचारों में आगे है, पुलिस ने पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की कथित हत्या की आरोपी एवं उनके मंगेतर सिया गोयल को आज लोहगढ़ किले ले जाकर अपराध स्थल पर घटनाक्रम को दोहराया। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे हैं। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदम्बी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स के फाइनल्स में जगह बना ली है। कैलिफोर्निया में खेले गए सेमीफाइनल्स में उन्होंने जापान के युदाई ओकिमोटो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और ये बता दूं कि आप हमें बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं और आप न्यूज ऑन एयर इस ऐप पर, जो प्रसार भारती की खुद की ऐप है, आप इस पर हमें बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं देश और दुनिया के किसी भी कोने से। तो भाई दर्द करारा तो हमारे दिल में भी हो रहा है क्योंकि इतनी सारी बातें आपको बतानी है। कई फिल्में होती हैं जो अपने पीछे कुछ कहानियां छोड़ जाती हैं, कई गीत होते हैं जिनके पीछे कुछ छुपी कहानियां होती हैं, और कई किरदार होते हैं जो असल जिंदगी के एक्चुअल हीरो होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे आपको बतानी है, बहुत कुछ है मेरे पिटारे में। बता दूं आपको, बहुत देर से मैं आपको सता रही हूँ ना कि बताना है, बता ही नहीं रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप जानते हैं कि मिथुन दा और टॉम ऑल्टर ने भारत के लिए क्रिकेट खेला था, क्या आप ये बात जानते हैं? अगर आप ये पूरा किस्सा जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कब, कहां और कैसे इन दोनों ने खेला था भारत के लिए अपना पहला मैच। बने रहिए हमारे साथ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

तो भाई आपको बताने वाली हूँ वो किस्सा जब मिथुन दा और टॉम ऑल्टर इन्होंने खेला था भारत के लिए क्रिकेट। जी हाँ, मिथुन दा टॉम ऑल्टर दोनों ही एफटीआईआई में क्लासमेट्स थे और एक्टिंग से पहले ये दोनों स्टेट लेवल बैडमिंटन पार्टनर्स भी रह चुके थे। 1983 में फिल्म रुखसत की शूटिंग के दौरान जब यूएसए में ये शूटिंग हो रही थी जिसका निर्देशन कर रही थी सिमी गरेवाल, उसी वक्त वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जो है 1983 की मैं बात कर रही हूँ, तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम अमेरिका में एग्जीबिशन मैचेस खेल रही थी। अब टॉम ऑल्टर ने मैच की ये खबर अखबार में पढ़ी और मैच देखने के लिए वो निकल पड़े न्यू जर्सी और उनके साथ मिथुन दा भी चल दिए। जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि टीम में दो प्लेयर्स कम थे और ऐसे में जब सुनील गावस्कर जी ने सामने से उन्हें पूछा तुम्हें खेलना है, तो इन दोनों ने हामी भर दी और ऐसे इन दोनों को मौका मिला अपने देश के लिए परदेश में खेलने का। जी हाँ, ये कोई ये इस बारे में जो है, इसका जो जिक्र है, इस किस्से का जिक्र जो है, टॉम ऑल्टर साहब के बेटे ने कई इंटरव्यूज में किया था। कई जगह उनके इंटरव्यूज जो हैं, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। और इस किस्से के बारे में वो जब बताते हैं तो देखिए, एक बेटा होने के नाते उनके चेहरे पर कितनी खुशी, कितनी स्माइल, कितना प्राउड होता है जब वो अपने पिता के बारे में ऐसे बात करते हैं। और भाई, देश के लिए खेलना या देश के लिए कुछ भी करना जो है वो बहुत बहुत बहुत गर्व की बात होती है हर किसी के लिए।

0: दिल नखरे वाला भले ही हो, लेकिन ये दिल बड़ा सीधा साधा भी है। जिसने प्यार से बात की, ये दिल उसी का हो जाता है। और हमारे लिसनर्स तो हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और ऐसे ही हमारे एक लिसनर है प्रणव शिंदे। अब इन्होंने कहा कि अब क्योंकि हम मिथुन दा की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने एक बहुत ही कमाल की जानकारी हमारे साथ शेयर की है, और वो ये कि आज ही के दिन 28 जून को 1985 में मिथुन दा की जो है एक फिल्म रिलीज हुई थी। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म का नाम है गुलामी। और ये चाहते हैं कि मैं इस मूवी का एक गीत सुना दूं। तो डेफिनेटली प्रणव जी, अब आपने हमारे साथ इतनी बेहतरीन जानकारी शेयर की है, तो भाई बनता है ये गीत प्ले करना। वैसे तो फरमाइशें जो हैं वो मैं अगले घंटे में लूंगी, लेकिन क्योंकि ये दिन खास है, ये फिल्म खास है, मिथुन दा की बात हो रही है और आपने हमारे साथ इतनी खास बात शेयर की है, तो ये गाना मैं डेफिनेटली डेफिनेटली आपके लिए प्ले करूंगी इस मूवी का। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, और ब्रेक के उस पार आपको सुनाएंगे इस फिल्म का गीत।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

90s की बेस्ट म्यूजिक एल्बम के पीछे छिपी है किसी की 35 सालों की तपस्या और मेहनत। कौन सी है ये म्यूजिक एल्बम और क्या है ये किस्सा, जानेंगे इस गीत के उस पार, क्योंकि ये कहानी बहुत है खास। अक्सर ये होता है कि इंसान जो है मेहनत करता जाता है लेकिन उसको उस मेहनत का फल नहीं मिल पाता, और कई बार तो 35 साल लग जाते हैं लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। और जब उसका वक्त आता है तो ऐसा आता है कि सारी दुनिया उसका जलवा देखती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस शख्स के साथ। कौन है ये, किसकी कहानी है ये, कौन सी म्यूजिक एल्बम है ये, आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात करने

वाली हूँ। तो चलिए आप सोचते रहिए, समझते रहिए कि कौन सी म्यूजिक एल्बम की मैं बात करने वाली हूँ, और अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो मुझे जरूर बताइए। लेकिन फिलहाल आपके लिए

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आकाशवाणी FM रेनबो।
4: वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम म्यूजिक कैफे, जहां पर गीतों और फिल्मों से जुड़ी कुछ छिपी हुई खबरें मैं आपके लिए लेकर आती हूं। और आज मैं जिस आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ, जिस फिल्म के म्यूजिक की बात करने वाली हूँ, लेट 90s पे आई थी ये म्यूजिक एल्बम। इस फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक थे, हिट हुए थे, सुपर हिट हुए थे, सुपर डुपर हिट हुए थे। और इस म्यूजिक एल्बम के पीछे किसी की 35 सालों की तपस्या और मेहनत मौजूद थी। ये एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर की कहानी है जिन्होंने फिल्मों से पहले 35 साल तक बॉलीवुड में एक वायलिनिस्ट और एक म्यूजिक अरेंजर के रूप में काम किया था, और इन्हें इसी बात के लिए जाना जाता था। लेकिन जब इस फिल्म में मिला उनको उनका पहला ब्रेक बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, और फिर तो जो हुआ वो कमाल हो गया। इन्होंने कमाल कर दिया, क्योंकि इस फिल्म के म्यूजिक ने लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए कुछ ऐसा ऐसा ऐसा कमाल किया कि वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गया। इस फिल्म में हर मूड के, हर उम्र के लोगों के लिए गाने थे जो दिल को छूने वाले थे। फिर चाहे प्यार के एहसास को बयां करता हुआ गीत हो, चांदनी कुछ कहा, या फिर अनजाने दिलों में किसी और किसी के हो जाने का फसाना हो, मुझको हुई न खबर, या फिर बच्चों का फेवरेट, घोड़ी जैसी चाल हाथी जैसी दुम, या फिर मूवी का टाइटल ट्रैक, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। इस फिल्म का हर गीत, हर एक गीत कमाल था, बेमिसाल था। और ये फिल्म थी दिल तो पागल है, और इसके महान म्यूजिक डायरेक्टर का नाम, जी हाँ वो नाम जो हमारे दिलों पर छप गया है, द वन एंड ओनली उत्तम सिंह जी। और इसके बाद इंडस्ट्री को मिला एक नया सितारा। जानते हैं उस साल उन्हें इस फिल्म के लिए सभी बड़े अवार्ड्स से नवाजा गया था, और उत्तम सिंह जी ने अति उत्तम काम करते हुए इस फिल्म में अति उत्तम संगीत दिया। और उस अति उत्तम संगीत में से एक गीत मैं अब आपके लिए यहाँ प्ले करने वाली हूँ।

और अब इसी के साथ म्यूजिक कैफे का सफर यहीं होता है समाप्त। छोड़े जा रही हूँ आपको आखिरी बेहद खूबसूरत से गीत के साथ, इस वायदे के साथ कि हिट एंड हॉट में आपकी फरमाइशों का पिटारा खुलेगा और कुछ जबरदस्त गाने मैं लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दूंगी, ठीक 1 बजे होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से, और मराठी में समाचार होंगे, और मराठी समाचारों के उस पार जो है आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हिट एंड हॉट। और ये जो हमारे हिट एंड हॉट का ये जो सिलसिला है, ये बड़ी खूबसूरती के साथ जो है चलने वाला है, और आप लोग को हमारे साथ हर पल हर लम्हा हर वक्त बने रहना होगा, क्योंकि फरमाइशें तो भाई आप लोगों ने अभी से भेजनी शुरू कर दी हैं। इतनी खूबसूरत खूबसूरत फरमाइशें आ रही हैं। अब मैं टोटली कन्फ्यूज हूँ कि कौन सा गाना प्ले करूँ कौन सा नहीं, लेकिन ये जानने के लिए कि मैं कौन सा गाने आपके लिए प्ले करने वाले हूँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। ठीक 1 बजे समाचार हमारे छत्रपति संभाजी स्टेशन से जो है मराठी में समाचार होंगे, उसके बाद में आपके लिए होगा ये कार्यक्रम। फिलहाल आशा जी की आवाज़ से इस कार्यक्रम को करते हैं टाटा बाय।

0: वाढदिवस, लग्न सोहळे, कौटुंबिक कार्यक्रम न राहता समाजाचे उत्सव बनतात. कुटुंबाला आपला आनंद इतरांसोबत वाटायचा असल्यानं पाहुण्यांना भेटवस्तूही दिल्या जातात. महाराष्ट्रातल्या नांदेड जिल्ह्यातल्या बहादूरपुरा गावातील एका कुटुंबाच्या आदर्श उपक्रमाची माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले,
1: नांदेड के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार ने अपने घर में विवाह के अवसर पर गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की. हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया. इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है.
0: यह संदर्भ में पूरा बोलता ना मोदी.

बिल्कुल हम लौट आए हैं आपके साथ में ट्यों ट्यों, मतलब कि आपकी पसंद के गाने लेकर, आपकी फरमाइशें लेकर, और वो सब करने की कोशिश करेंगे जो आपको पसंद है। होता है कभी कभी आपकी पसंद की फरमाइश जो है हम वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि समय की जो है कमी रह जाती है कई बार। कभी कभी जो है गाने बहुत बड़े बड़े सब रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो इस वजह से गाने कम प्ले हो पाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से एडवांस में ही सॉरी बोल रही हूँ। बहुत जल्द मैं आप लोगों की फरमाइशें प्ले करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले आज जिसकी फरमाइश प्ले होगी वो है पंकज मोहर जी, और इन्होंने हमें आज हमारे साथ में ये बात शेयर की है कि आज जो है फरेब फिल्म और हिना फिल्म को रिलीज़ हुए 30 और 35 साल हो चुके हैं। तो फरेब फिल्म जो है वो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी 1996 में, विक्रम भट्ट साहब की निर्देशित फिल्म थी जिसमें जतिन ललित का संगीत था, और साथ ही साथ में इसके गाने बहुत खूबसूरत थे। और हिना मूवी को हम कैसे भूल सकते हैं, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। वैसे इस गीत देर ना हो जाए का भी ना किस्सा बड़ा ही कमाल का है, एक दिन आपके लिए मैं डेफिनेटली वो प्लीज लेकर आऊंगी, इस बात का मेरा वायदा है। तो ये मूवी जो है ये भी आज ही के दिन रिलीज हुई थी 28 जून 1991 में। तो हम जो है आज आपको सबसे पहले इसीलिए पंकज मोहर जी की फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं गीत। तो इनकी फरमाइश पर है फरेब फिल्म का गीत ये तेरी आंखें झुकी झुकी, और इसके बाद जो अगला गीत हम प्ले करने वाले हैं वो है चांद तारे यस बॉस से, ये हम प्ले करने वाले हैं संदीप जी की पसंद पर। तो बस आप लोग जो है साथ में बने रहिए, आप लोग की पसंद के देखते हैं किस किस के गीत हम प्ले कर पाते हैं आज, और कितने बड़े और छोटे गीत आप रिक्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।

बहुत छोटे छोटे ख्वाब थे, है ना। और ऐसे ख्वाब अक्सर पूरे हो जाएं तो भाई क्या बात है, क्या है बात है, क्या बात है। तो अगली जो फरमाइश मैं प्ले करने वाली हूँ वो है अभिजीत जी की, उनके साथ में इस गीत की फरमाइश की है सरिता जी, प्रणीता जी, प्रिंस और टुक टुक, लाडला टुक टुक इन्होंने की है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमें धड़ाधड़ मैसेजेस कर रहे हैं एंड वी आर फीलिंग सो लव्ड, हमें इतनी खुशी हो रही है। अब पता नहीं मैं किस किस के गीत जो है अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाऊंगी। महेश बोराना जी, प्रणव शिंदे जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, विजेंद्र घटोल जी, प्राची शिंदे जी, आपने मुझे मैसेज करके कहा कि अरे मैंने भी तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी फरेव मूवी की, तो माफ़ कीजिएगा मैं आपका मैसेज अभी मैंने जस्ट चेक किया तो मैंने आपका मैसेज देखा। थैंक यू सो मच। आपने अराउंड 10:30 बजे के आसपास कभी तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की थी कि फरेव मूवी कब रिलीज हुई थी। थैंक यू सो मच। गीत तो मैंने इसका प्ले कर दिया है तो अभी तो वो दूसरा गीत मैं नहीं प्ले कर पाऊंगी। स्वर्ण सिंह जी, अजय सखारे जी, पंकज मोहर जी, गुरमीत सिंह, मीता जी, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आप सब लोगों की तरफ से थैंक यू सो मच। हमें आरती अरोड़ा जी, आप सब लोगों ने हमें इतनी सारी फरमाइशें भेजी हैं। विट्ठल जी, प्रिया जी छत्तीसगढ़ से, अभिजीत गवहनकर जी, अभी जो अगली फरमाइश है मैंने कहा वो आप ही की पसंद की है, दिग्दर्शन और कविता जी, थैंक यू सो मच हमें मैसेजेस करने के लिए। हरजिंदर छिंदा जी, आपका पूरा परिवार अक्सर जो है फरमाइश करता है, जसवीर, जसी, सीता और गीता, थैंक यू सो मच। पंजाब से ये फरमाइश हमारे पास करते हैं। उल्हासनगर से फरमाइश आती है वैष्णवी जी की। फिरोजसिंहपुरिया जी की फरमाइश आ रही है, जो गीत हम प्ले करने वाले हैं उनका एक म्यूजिक लवर्स का ग्रुप है, उनको वो गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम ये गीत जरूर प्ले करेंगे। रजनीकांत पाटिल जी, थैंक यू सो मच। शिवनाथ जाखरे जी, राम प्रजापति जी, अंजू जी अंधेरी से, थैंक यू सो मच हमें इतने सारे मैसेजेस करने के लिए। जैसा मैंने कहा कोशिश करूंगी जितना हो सके आपके गीतों को शामिल करने की अपने इस कार्यक्रम में। फिलहाल तो ये गीत, और आपको बता दूंगी ठीक 1:30 पर होंगे समाचार मराठी में।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेन, वो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव हमारे मुंबई स्टूडियो से बिना वक्त गवाते हुए, क्योंकि फरमाइशें बहुत हैं, वक्त बहुत कम। मैं फटाफट बता देती हूँ कि अगली फरमाइश है महेश शेट्टी जी की, विजेंद्र घटोल जी की और महेश बोरा जी की, और इनके लिए हम प्ले कर रहे हैं साजन फिल्म का गीत देखा है पहली बार। इसके अलावा स्वर्ण सिंह जी सुनना चाहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में रोटी फिल्म का गीत गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, और इनके साथ में जिन परिवार वालों ने इस गीत की फरमाइश की है वो है दलजीत सिंह जी, राजदीप सिंह जी, गुरनूर सिंह जी, शुभदीप जी, गुरलाल जी और अधिराज जी। इन सब के जो है ये गाने प्ले होने वाले हैं। और साथ ही साथ प्राची, जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया है कि जो गाना मैं इनकी पसंद का प्ले करने वाली हूँ उस वो मूवी भी आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी और उसे 24 साल हो चुके हैं क्या दिल ने कहा इस मूवी को रिलीज़ हुए। तो इस मूवी का गीत जो है प्राची की

कोशिश की मैंने जितनी मैक्सिमम हो सकती थी आपकी फरमाइशें लूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो शायद नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि आज उनकी फरमाइश नहीं ले पाई, और आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। लालगिरी गोस्वामी जी, थैंक यू सो मच हमें मैसेज करने के लिए। प्राची शिंदे जी, फिरोज सिगनपुरिया जी, मुकेश कश्यप जी, अभिजीत गवहनकर जी, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, नयन जी वडाला से, प्रणव शिंदे जी, शिवकांत जाखड़े जी, महेश शेट्टी जी, महेश बुहारा बुहारा जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, विजेंद्र घटोल जी अकोला से, स्वर्ण सिंह जी और उनका पूरा परिवार, अजय सखारे जी, पंकज मोहर जी, गुरमीत सिंह, मीता, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती, विठल मुनगेस जी, प्रिया जी छत्तीसगढ़ से, संदीप कुमार जी, दिग्दर्शन और कविता, हरजिंदर जी का पूरा परिवार,

रजनीकांत पाटिल जी, उल्हास नगर से वैष्णवी जी, कल्पना वारे जी, राम प्रजापति जी, अंजू जी, राजेंद्र परमार जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी के कारण मैं और फरमाइशें नहीं ले पाऊंगी। या आखिरी जो फरमाइश है वो स्वर्ण सिंह और उनकी पूरी फैमिली की है, पूरे सिंह परिवार की ये फरमाइश है। रोटी फिल्म का ये गीत है, आप इसे एंजॉय कीजिए। ठीक 2 बजे से होंगे समाचार और 2:30 से आप सुन सकेंगे मराठी कार्यक्रम यहीं FM रेनबो पर। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी एक गीत है, इसे गुनगुनाते रहिए।

0: India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition.

0: उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने

0: बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन

0: ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गुड़ंदार गुड़ गुड़ बेड़काची बड़ बड़ भार
1: खोल खोल जमीनी से उगड़ंदार गुड़ गुड़।

बोलणार कधी नकावर राग तुझ जाणार.

0: अजून बसले कोण कोण कोण
1: पासिंग पाधुन बसले कोणा।

सुनिधि चौहान और शफकत अमानत अली की आवाज़, विशाल ददलानी का लिखा हुआ गाना है और विशाल शेखर की कॉम्पोजिशन पर आई लव स्टोरी से 5:08 का वक्त हो गया है।

लव यू जिंदगी के साथ हाजिर हो गई हूँ मैं शिल्पा, और पूरे 8 बजे तक का सफ़र हमारा रहेगा। और आज विशाल ददलानी का हैप्पी वाला बर्थडे भी है, तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले इन्हें। और इस घंटे हम उनके कुछ गाने भी सुनेंगे साथ में। यस, आज क्या होने वाला है, आज नया गेम जो है वो इंट्रोड्यूस होने वाला है, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी पहेली रहेगी और उस पहेली को सुनकर आपको फिल्म को जो है वो पहचानना है। उसके लिए आपको थोड़ा एक ब्रीथिंग स्पेस अभी एक गाने का जो है वो मैं देती हूँ, ज़्यादा नहीं। आई थिंक शुरुआत में मैं आसान पहेलियाँ लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि एक बार गेम जो है वो समझ आ जाए और उसके बाद जो है उसके लेवल 2 पर जो है वो हम जाएंगे। फिलहाल हैरत लेकर आ रही है लकी अली और अनजाना अनजाने का ये गाना है, विशाल शेखर ने आपको उस कंपोज किया है, और लिरिक्स इसमें भी विशाल ददलानी के हैं। सुने इस गाने के उस पार जो है वो खेल की शुरुआत करेंगे।

107.1 FM रेनबो पर 5:12 का वक्त हो गया है और संडे की शाम शिल्पा के संग आप बने हुए हैं। लव यू जिंदगी जो है वो चल रहा है और यहाँ पर एक नया छोटा सा गेम जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसमें कुछ नहीं, एक पहेली है और पहेली को सुनकर आपको फिल्म का नाम जो है वो पहचानना है। बड़ा आसान सा भी मैंने रखा है ताकि एक बार समझ आ जाए, ठीक है। तो कॉलेज की हंसी में

0: धीरे धीरे प्यार बनती रही। एक लड़की चली गई अचानक और पीछे छोड़ गई अधूरी कहानी। सालों बाद कुछ खत खुले, कुछ यादें फिर से जागी। कौन सी फिल्म की बात हो रही है? 8657661 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट से बता दें। कॉलेज की हंसी में छिपा था एक राज, दोस्ती धीरे धीरे प्यार बनती रही। एक लड़की चली गई अचानक और पीछे छोड़ गई अधूरी कहानी। सालों बाद कुछ खत खुले, कुछ यादें फिर से जागी, बताएं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर एक गाना आप लोगों के लिए आ रहा है यही म्यूजिकली।
1: कभी खट्टी मीठी तकरार,
2: जब तुम चाहो पास आ दे हो।
1: कभी बे इंतहा प्यार,
3: बे इंतहा।
1: कभी चुलबुली सी शरारत,
4: बघाने बावड़े आगर, बघाने बावड़े आगर।
1: तो कभी मासूमियत बेशुमार, ये है अनोखे रंगों वाला FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिल से दिल तक।
2: मन वाला दे,
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
5: ओ हो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

के एन सुनिधि चौहान की आवाज़ में अक्सर फिल्म का गाना आप लोगों ने सुना। 5:24 का वक्त हो गया है। लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी और ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सही जवाब जो है वो दिया है और म्यूज़िक से ही समझ आ जाएगा कि कौन सी फिल्म की इनफैक्ट बात हो रही थी। कुछ कुछ होता है ऑफकोर्स। अजय मिश्रा जी, प्रांजल पाटिल, प्रवीण जी, नितिन जी, प्रणव शिंदे, अजय साखरे जी, पंकज मोहर जी, प्राची शिंदे और महेश बोरा जी, इन सारे लोगों ने राइट आंसर जो है वो दिया है। तो ये मुझे लग रहा है कि जो मैं इजी वाले लाई थी वो शायद जंप करके हम डायरेक्ट लेवल 2 पर जो है जाना चाहिए। ओके, तो जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, यहाँ पे खेल चल रहा है। पहली आपके सामने जो है वो रखी जाएगी और आपको उसको सुनकर पहचानना है कि फिल्म का नाम जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो एक खेल था पर मैदान से बड़ा, वो एक खेल था पर मैदान से बड़ा। कुछ लोग पैसे के लिए खेले, कुछ इज्जत के लिए, आखिरी गेंद तक सब सांस रोक के बैठे रहे और फिर इतिहास बन गया। कौन सी फिल्म है बताएं। 8-6-5-7-6-6-1-0

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

ऑलराइट 107.1 FM रेनबो पर 5:36 का वक्त हो गया है। लव यू जिंदगी पर शिल्पा के संग आप बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों के गलत जवाब आए हैं पहले किन किन लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है उनके नाम जो है वो अनाउंस होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ना अच्छे से जो है वो सुनी नहीं पहेली, उसमें स्पष्ट रूप से जो है वो कहा गया था कि गेंद ये वर्ड यूज़ किया मैंने, और आपने बहुत सारे लोगों ने लगान फिल्म का जो है नाम भेजा है। वो कैसे होगी जब आप खेल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजन तो डेफिनेटली है क्योंकि खेल के ऊपर बहुत सारी फिल्में जो है वो बनी है, लेकिन अगर गेंद ये वर्ड आ रहा है तो एक आपको कहना चाहिए छाटे में काफ़ी आसानी होनी चाहिए कि भैया क्रिकेट वाली मूवीज़ जो है वो नहीं इसमें शामिल करनी है, और बहुत सारे और खेल के ऊपर भी बनी है लेकिन गेंद से जुड़ी हुई कौन सी फिल्म जो है वो हो सकती है। म्यूजिक सुने जरा जिन लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है।

उसकी एक जो आखिरी लाइन थी ना, और फिर इतिहास बन गया, वो रियल लाइफ में भी वैसा हुआ। आखिरी गेंद तक सब सांस रुक के बैठे रहे। याद आई चक दे फिल्म की बात जो है वो हो रही थी, और गलत जवाब जिन जिन लोगों ने दिया है उनके नाम हैं गजानन शिंदे, यस, उसके अलावा प्रवीण जी, अजय मिश्रा जी, शरद जी, महेश बोरा जी, नितिन जी, अदनान अंसारी और प्रांजल पाटिल। इन सारे लोगों ने रॉन्ग आंसर भेजा है, बहुत सारे लोगों ने सबने लगान जो है वो लिख कर भेजा है मोस्टली, और रेस भी आया है आंसर। ओके, और राइट आंसर भेजा है प्रणव शिंदे जी ने, प्राची शिंदे ने और अजय साखरे जी ने। यस, यहाँ पर फिलहाल एक गेम चल रहा है बढ़िया सा, आज शुरू किया गया है, तो उसका लेवल वन जो है वो अभी हम पार करेंगे। तो इसमें एक पहेली है आप लोगों के लिए, और उस पहेली को सुनकर आपको फिल्म का नाम जो है वो पहचानना है, ठीक है। तो अभी अगला जो गाने के लिए जो आ रही लाइन्स वो ऐसी हैं कि एक शहर था जहाँ हर कोई अपनी मंजिल ढूंढ रहा था, दो लोग मिले पर उनकी कहानी मिलने की नहीं बिछड़ने की थी, कुछ हद कभी सही हाथों तक नहीं पहुँचे और जो पहुँचे उन्होंने जिंदगी बदल दी। कौन सी फिल्म की बात हो रही है? 8 6 5 7 6 6 1 0 7 1 या हमारा

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

107.1 FM रेनबो पर 5:00 ऑलमोस्ट 50 मिनट होने वाले हैं। लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी, और ऑलमोस्ट सबका गलत जवाब जो है वो आया है। आई थिंक पहली जो है वो ध्यान से नहीं सुनी जा रही है, बस ऊपर ऊपर से सुन के आपने मैसेज जो है वो सबने कर दी है। अगर गौर से एकदम ऐसे कान लगा कर समझेंगे तभी जो है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्मों जो शब्द इसमें आ रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों के रेफरेंस जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन जब वो डीप में आप जाएंगे तब आपको जो है वो समझ आएगा कि कौन सी फिल्म के बारे में बात हो रही है। और बस एक सही जवाब आया है प्रवीण जी का, और ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सिर्फ तुम फिल्म का नाम जो है वो भेजा। अब इसको ध्यान से सुनिए कि एक शहर था जहाँ हर कोई अपनी मंजिल ढूंढ रहा था, दो लोग मिले पर उनकी कहानी मिलने की नहीं बिछड़ने की थी, कुछ खत कभी सही हाथों तक नहीं पहुँचे और जो पहुँचे उन्होंने ज़िंदगी बदल दी। अब ये सिर्फ तुम की कहानी आप याद करिए तो आपको समझ आएगा कि उसके ऊपर जो है वो ये पहेली नहीं जाती है, दी लंच बॉक्स फिल्म का नाम है। यस, और सही जवाब मैंने बताया प्रवीण जी ने है। अब एक गाना जो है लंच बॉक्स का तो नहीं, छियाँ छियाँ यहाँ पर प्ले होने वाला, इनफैक्ट हो चुका है दिल से फिल्म

ऑल राइट, दैट्स कुमार सानू साहब, और 6:02 का वक्त हो गया है। इस घंटे का नहीं कहूँगी क्योंकि 6 बजे के उस पार जो है वो हो चुके हैं, लेकिन लव यू सिटी का एक आखिरी गाना जो है आप लोगों तक पहुँचने वाला है यहाँ पर। और 6:05 पर समाचार होंगे नागपुर केंद्र से, 6:15 पर मुलाकात होगी हमारी अंदाज़े बया के साथ। और बहुत बढ़िया फिर भी खेला आप लोगों ने, और बस 2-3 गेम आई गेस लगेंगे और फिर सारे लोग ट्रेन हो चुके होंगे। यस, आज मुझे एहसास हुआ था पहला गाना जब जो है पहला गाना नहीं इनफैक्ट पहली फिल्म के बारे में जो कहा गया था। एनीवेज, अभिजीत दा और चित्रा जी आ गए इस गाने को लेकर। सुने और लौट कर आए और बने रहें म्यूजिकली यॉर्स पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 FM रेनबो पर 6:15 का वक्त हो गया है। अभी आप सुन रहे थे समाचार हमारे नागपुर केंद्र से, और अब यहाँ पर शुरुआत होती है अंदाजे बयां की। यस, और ये वो घंटा होगा जहाँ पर आप लोगों के लिए क्लिष्ट हिंदी लेकर आई जाएगी और आपको जो है वो गाने पहचानना है, लेकिन थोड़ा ऐसा जो है वो सांस ऐसा थोड़ी सेटल कर लीजिए, क्योंकि एक गेम खेलने के बाद हम थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस जो है वो देते हैं। तो इस गाने के उस पार जो है वो खेल की शुरुआत हो जाएगी। अन्वेषा, विनीत और हर्षदीप की आवाज़ में प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आकाशवाणी FM रेनबो।
4: म्यूजिकली ऑर्स 107.1 FM रेनबो पर 6:22 का वक्त हो गया है। अंदाजे बयां पर शिल्पा के संग बने हुए हैं और ये वो घंटा होता है जहां पर हम खेल खेलते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, सही जवाब जो है वो देना होता है। और मैं आपको जो है वो क्या पूछती हूँ, गानों का शुद्ध हिंदी करके, गानों की शुद्ध हिंदी करके, क्लिष्ट हिंदी करके आपको बताई जाती है और आपको उनको पहचानना होता है। ठीक है, तो पहला गाना आ रहा है, आज अपने ही अस्तित्व की परीक्षा ले लो, यह चित्त न जाने कब से स्वयं को नियंत्रित किए दिशाहीन विचरण कर रहा है। अभी व्यक्ति अधरों पर अवरुद्ध है, मस्तक तुम्हारी आराधना में अवनत है, प्रत्येक पल असंख्य प्रकाश पुंज चहुं ओर विकीर्ण होते रहे हैं। कौन सा गाना है ये बताएं 8657661 पर। थोड़ा कठिन है इसलिए फिर से एक बार रिपीट जो है वो कर देती हूँ कि आज अपने ही अस्तित्व की परीक्षा ले लो, यह चित्त न जाने कब से स्वयं को नियंत्रित किए दिशाहीन विचरण कर रहा है। अभिव्यक्ति अधरों पर अवरुद्ध है, मस्तक तुम्हारी आराधना में अवनत है, प्रत्येक पल असंख्य प्रकाश पुंज चहुं ओर विकीर्ण होते रहे हैं। बताएं, बाबुल सुप्रियो और अलका जी आवाज़ में।

लाल और रूही कुमार राठौर साहब की आवाज़ में गाना जी बज कर 33 मिनट का वक्त हो रहा है संडे की शाम। अगर ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे वाले गाने अगर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर आप सुनें तो डेफिनेटली मज़ा जो है वो आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अंदाज़े बयान चल रहा है, शिल्पा के साथ बने हुए हैं, एक गेम खेला जा रहा है जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, राइट आंसर जो है वो मैं बता ही दूँगी, है ना। तो अभी वाला जो है वो बस एक हमारे लिस्टर है वो गेस कर पाए, इनफैक्ट म्यूज़िक से भी समझ नहीं आएगा, ये लिटरली इतना टफ है। बहुत सारे रॉन्ग आंसर आए हैं, सबसे पहले सही जवाब जिनने बताया है उनका नाम नितिन है। आया ध्यान परख लो, परख लो, एक इसका ऑप्शन ये भी था, लेकिन थोड़ा क्लिष्ट करने के बाद जो है आज अपने ही अस्तित्व की परीक्षा ले लो, यह चित्त न जाने कब से स्वयं को नियंत्रित किए दिशाहीन विचरण कर रहा है। अब मैच करिएगा

अगला गाना जो है वो आ रहा है कि हृदय विदीर्ण हुआ अनुराग का उदय हो गया, हृदय विदीर्ण हुआ अनुराग का उदय हो गया, वह अज्ञात जन मेरे मानस को विलक्षण रूप से प्रिय लगने लगा। ये रिपीट है लाइन्स, एक्चुअली पहली वाली जो मैंने लाइन आपको बताई है वो दोबारा है और फिर ये रिपीट है, तो इसलिए छोटा सा जो है वो सुनने में लग रहा है। लेकिन बताइए कौन सा गाना है, हृदय विदीर्ण हुआ और प्रेम का और अनुराग का उदय हो गया, वह अज्ञात जन मेरे मानस को विलक्षण रूप से

सभी, और आज एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। बहुत सारे लोगों को राइट आंसर जो है वो पहचानने में दिक्कत हो रही है, और गाना जो है वो ये वाला है, हृदय विदीर्ण हुआ अनुराग का उदय हो गया, वह अज्ञात जन मेरे मानस को विलक्षण रूप से प्रिय लगने लगा। ओके, ये गाना मैं पूरा सुनाऊंगी। राइट आंसर दिया है सारिगा जी और प्रफुल्ल जी ने, और अब अगला गाना जो है वो

प्रेम के रंग में मुझे पूर्णतः रंगा दो, हे प्रिय, स्नेह के रंग में मेरे समस्त अस्तित्व को आच्छादित कर दो। मैं अपने भाग्य की समस्त कथा सुनाऊं, तुम्हारे प्रेम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, हे प्रियतम, तुम्हारे अनुराग में मेरा हृदय पूर्णतः निमग्न हो चुका है। कौन सा गाना है ये बताएं मुझे। आठ पाँच सात छः एक शून्य सात एक रिपीट करना है क्या? नहीं, गेस कर लेंगे आप।

That's Abhijeet Sawant, आपका अभिजीत सावंत इस एल्बम से. ये गाना सुना चाहिए बजकर 55 मिनट का वक्त हो गया है अंदाजे वहाँ पर बने हुए आप सभी और बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी और रंग से जुड़े हुए सारे गाने मतलब 6-7 गाने तो जो है वो मुझे भेज दिए, लेकिन एक्चुअल गाना जो है वो कौन सा है जरा सुने. उसके बाद वो हिंदी की कुछ लाइनें भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी ताकि समझ आए कि कहाँ जो है वो गलती हो रही थी. अभी इस गाने के लिरिक्स सुनना और प्रेम के रंग में मुझे पूर्णतः रंगा दो हे प्रिय, स्नेह के रंग में मेरे समस्त अस्तित्व को आच्छादित कर दो. मैं अपने भाग्य की समस्त कथा सुनाऊँ. सुनिए जरा को जो है वो समझ आएगा कि कहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी जो है वो हो रही थी. एनीवेज तो अभी इस घंटे का ये आखिरी गाना है और ठीक 7 बजे आप लोगों के लिए समाचार होंगे. 7:10 पर मुलाकात होगी हम तुमके साथ. 8-6-5-5-6-6-1-0-7-1 ऑलरेडी काफ़ी सारे मैसेज आ गए हैं, लेकिन आप भी जो है वो कर सकते हैं और गाने की फरमाइश भेज सकते हैं. फिलहाल अली परवेज मेहदी श्वेता और

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Musically yours 107.1 FM Rainbow पर 7:11 का वक्त हो गया है और अभी आप सुन रहे थे समाचार. अब यहाँ पर शुरुआत होती है हम तुमकी 8756601071 हमारा व्हाट्सएप नंबर है. इस पर फटाफट से मैसेज कर दें अगर कोई गाना सुनने का मन कर रहा है, लेकिन प्लीज़ ऑप्शन के साथ भेजिएगा. दूसरी चीज़, जो गाना लिटरली एक हफ्ते पहले सुना हो उसके पहले वाले भेजिएगा. कभी कभी ऐसा होता है परसों भी सुना है तो इसे बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, मैडम सुबह ही तो सुना था है ना. तो इसीलिए कोशिश करिए कि जो गाना जेन्युइनली बहुत अच्छे से नहीं सुना है वो प्लीज़ भेजें. और फिलहाल विजेंद्र जी की फरमाइश पर आ रहा है कुमार शानू साहब और अलका जी की आवाज़ में.

यही प्यार है इस फिल्म से सुना ये गाना हीरा मणि वर्मा जी, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा जी की फरमाइश पर हुआ पे 7:22 वक्त हो गया है और हम तुम पर बने हुए हैं आप शिल्पा के संग। और अगली रिक्वेस्ट आ रही है अजय साखरे जी की, आपका भी कुछ सुनने का मन कर रहा है तो 8656-6107-1 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 7:30 बजे तक रिक्वेस्ट दी जाएगी क्योंकि उसके बाद जो आ जाती है ना बहुत सारी ऐसे बल्क में वो हम प्ले करेंगे अगले आधे घंटे, उसमें भी से कुछ रह जाती है ठीक है। तो अगले 8 मिनट में कुछ भेजना है तो फटाफट से भेज दें प्लीज़ ऑप्शन के साथ। यस, रेखा भारद्वाज, सुजाता, श्रद्धा समन कर गाएंगे दिल्ली 6।

लता जी और उदित जी की आवाज़ में गाना सुना दिल तो पागल है फिल्म से। 7:31 का वक्त हो गया है। हम तुम पर बने हुए हैं आप सभी और अरविंद कुलकर्णी जी और ज्योति घाटोल जी की फरमाइश पर हुआ ये वाला गाना प्ले। और अगली रिक्वेस्ट आ रही है पंकज महोर जी की, सुजाता त्रिवेदी की आवाज़ में ये गाना तक्षक फिल्म से। बहुत अच्छे बात है कि एटलीस्ट मेरे शो में प्ले हो रहा है। और अगर जिस भी एरिया में बारिश हो रही है ये गाना उस बारिश को खूबसूरत बनाएगा और ये गाना बारिश की वजह से खूबसूरत लगेगा। दोनों चीज़ें जो है एट अ टाइम होगी। सुनिए और लौट कर आइए म्यूजिकल योर्स पर।

भाई ये वो गाने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप के लिए लिटरली बीज बोए हैं। 7:45 का वक्त हो गया है, गोपाल राव जी की फरमाइश पर हुआ ये वाला गाना प्ले। और लिटरली कहते ना कि बातों में शायद ऐसा कभी नहीं लगता है कि अच्छा फॉरेन की जो है वो ट्रिप करनी चाहिए, लेकिन जब आप विजुअली देख लेते हैं कि हाई इतनी सुंदर भी कोई जगह है तो मन में जो है थोड़ा लालच आ जाता है। और इन गानों के वजह से जो है कहीं ना कहीं मन में फॉरेन ट्रिप का रहता है। होली पे वो अलग बात है, लेकिन यस ख्वाब सबके होते हैं, जाने के लिए अच्छी बात है। चलिए फिलहाल अगला गाना ऑलरेडी प्ले हो चुका है, उदित जी की आवाज़ में है, साथ में अलका जी गुनगुना रही हैं, जीत फिल्म का है, समीर साहब ने लिखा इस गाने को। सांसें चलेंगे अभी इनकी तेज तेज, सुने गजानन शिंदे जी आप।

50 गए। हम तुम पर बने हुए हैं आप सभी, गजानन शिंदे जी की फरमाइश पर हुआ ये वाला गाना प्ले। और अब दो गाने आएंगे आप लोगों के लिए बैक टू बैक, और प्रांजल पाटिल, अदनान अंसारी, नितिन जी, महेश बोरा, सुभद्रा जी, शरद जी, अजय मिश्रा, सारिका जी, प्रफुल्ल जी, संजय पाटिल, मिलेश गजानन राउत, श्रेयर राउत, फिरोज सिकंदपुरिया, प्रवीण जी, अरविंद कुलकर्णी, इब्राहिम, अजय साखरे जी, विठल जी, हीरामणि वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, हरजिंदर छिंदा जसवी, प्रकाश शिंदे, दिग्दर्शन और कविता जी, प्राची शिंदे, प्रणव शिंदे, ज्योति जी अकोला से, गोपाल राव, विजेंद्र जी अकोला से, पंकज मोहोड़ और गजानन शिंदे, इन सभी लोगों ने जो है वो मैसेजेस भेजे जो पूरे 5 बजे से ऑलमोस्ट बने हुए थे। और अब यहाँ पर दो गाने आ रहे हैं जैसा मैंने कहा, और उसके बाद आप लोगों के साथ विद्यासागर होंगे। मेरी आपकी मुलाकात जो है वो यही होगी एफएम रेनबो पर। कब होगी सरप्राइज जो है वो मिलता है जब हम आते हैं, तो अगले महीने मुलाकात करेंगे। और टिल देन जो करना है करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छी रील्स देखें और अच्छी रील फॉरवर्ड करें।

सोचने वाला काम भी है और जिम्मेदारी वाला काम भी है। हालांकि हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे कहीं फ़र्क पड़ता है कि एक रील किसी को फॉरवर्ड कर दी, लेकिन उसका सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से जो है वो हो रहा है और अच्छा कंटेंट आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं हमारी भी, हम सब की, देखने वालों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्लीज़ कोशिश करा करिए कि अच्छी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ाएं। चलिए अभी फ़िलहाल अलका जी और उदित जी का कॉम्बिनेशन।

0: विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मेनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मेनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मेनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल

0: डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण

0: लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटना स्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1,000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where

I need the most of my

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन

सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जाँच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो पर रंगे महफिल प्रोग्राम में अदब के साथ आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विनीता बेदी और आइए आज के रंगे महफिल में सजाते हैं एहसासों की महफिल। दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया बड़ी अजीब होती है। यहाँ कुछ रिश्ते उम्र भर साथ रहकर भी मुकम्मल नहीं होते और कुछ बिछड़ कर भी दिल की धड़कनों में आबाद रहते हैं। कहते हैं इश्क अगर मिल जाए तो कहानी बनता है और अगर अधूरा रह जाए तो गजल बन जाता है।

0: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, रिश्तों का टूटना हमेशा आवाज नहीं करता। कुछ बिखराव ऐसे भी होते हैं जो भीतर ही भीतर पूरी रूह को वीरान कर देते हैं। और अजीब बात देखिए ना कि इंसान सबसे ज्यादा उसे मुस्कुराहट में उदास दिखाई देता है जिसे वो जिंदगी के लिए और दुनिया के लिए संभाल कर रखता है। ताजुब है ना?
1: पेशे खिदमत है कलामे वाली ऐसी है।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए।

ये लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं आज रंगे महफिल विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, जिंदगी का सफर मंजिलों से कम, लोगों से ज्यादा बनता है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं और रास्ता आसान कर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चले तो जाते हैं मगर उम्र भर हर मोड़ पर उनका इंतजार हमारा हमसफर बना रहता है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लेकिन दिल दिल कहाँ किसी मोड़ पर रुकना जानता है ना।

रंग महफिल सुन रहे हैं आप विनीता बेदी के साथ। इश्क में दीवानगी को इल्ज़ाम नहीं है दोस्तों, ये तो वो दौलत है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। जिसे मोहब्बत ने छुआ हो वो दुनिया को पहले जैसा देख ही नहीं सकता। उसके लिए हर मौसम का रंग बदल जाता है, हर शाम का मतलब बदल जाता है और हर खामोशी एक मुकम्मल गुफ्तगू बन जाती है। कहा भी है ना गालिब ने कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी।

गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दवाओं, शल्य चिकित्सा के सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा शामिल हैं। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। बेलफास्ट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, जीरो आर शो में आपका स्वागत है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: समाचार के साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला जारी है। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दो बातों का सिलसिला शुरू हो ही गया है, तो एक बात तो ज़रूर करें, दूसरी आप कीजिएगा। और मैं बता दूं कि पहली बात तो ये कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुहानी रात, जो कि हम एक तरह से मिश्रण कार्यक्रम कह सकते हैं 90s और बाद के गानों का। लेकिन कोशिश रहती है कि 90s के उन गानों को जो तब भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, अमर हैं, आप तक पहुंचाने का कोशिश यही रहती है कि इस खूबसूरत रात को जब हम सुहानी रात बनाने जा रहे हैं, सोने पे सुहागा करने जा रहे हैं, तो उसमें क्यों ना आपका भी साथ मिले। आप कुछ कहना चाहें, कुछ बात करना चाहें, मैसेजेस के ज़रिए बताना चाहें अपने दिल की कुछ बात, और जुड़ना चाहें हमारे इन गीतों के साथ, उस सुहाने सफ़र के साथ जिसे आप और हम मिलकर सुहानी रात कहते हैं, तो गज़ब का मेल होगा, गज़ब की जुगलबंदी होगी। और उस जुगलबंदी को हम यहाँ से ला रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, 102.6 इस फ्रीक्वेंसी का नाम है। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज़ ऑन एयर के जरिए, देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से ये प्रोग्राम सुनने के लिए, या यूँ कहें कि गालिबन सभी शो

0: सुनने के लिए आकाशवाणी रेनबो के। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सुहानी रात के आज के सफर को लेकर मैं हाजिर हूं रजत आपके साथ। सबसे पहले स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और आप सभी का अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन अपने इस शो में जो 90s और आसपास के गानों को सुमधुर जुगलबंदी के साथ, बेजोड़ गानों के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ कहना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें, कुछ बताना चाहें तो आप ज़रूर बता सकते हैं, आपका इस्तकबाल है। और कहना चाहिए खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहानी रात मेरे यानी रजत के साथ। आकाशवाणी रेनबो 102.6 साथ ही साथ न्यूज ऑन एयर ऐप भी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्ध पोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के

0: साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ग्रीस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। भारत के किदांबी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। हाफ टाइम के बाद भी दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी रेनबो। आइए सुने नगमे जो भुलाए ना बने।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू

होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किए। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। ग्रुप चरण के मुकाबले खत्म होने के बाद 32 टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इस चरण में 16 मैच खेले जाने हैं। भारत के स्टार शटलर किताम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को हराया। 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना फाइनल में चीनी ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू लिंग यांग से होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यादों के साथ, बातों के साथ गुजरते गुजरते अब करीब 3 घंटे हमें हो चुके हैं जब हम इन यादों के साथ, इस खूबसूरत गुलदस्ते के साथ दाखिल हुए थे नए दिन में। जी हाँ, 0 आवर से पहले का दिन और उसके बाद का दिन बदल चुका है और अब ये दिन भी करीब करीब 3.25 घंटे पुराना हो चुका है। लेकिन इससे जुड़ी यादें कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग पर ज़रूर रहेंगे आने वाले कई अरसे तक, क्योंकि कोई भी लम्हा अपना तात्पर्य नहीं खोता आगे जाने के बाद भी। किसी ना किसी पल के, किसी ना किसी लम्हे के अपने ही कुछ नक्श होते हैं, कुछ उसके अपने ही ढंग होते हैं और आने वाले वक्त के साथ आपको हर लम्हा याद आता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लम्हा ज़रूर आपके साथ यादों की एक ऐसी फहरिस्त तैयार कर देता है जिसे आप आने वाले वक्त में नहीं भूलते, और यही कोशिश करते हैं हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए भी और अपने शोज़ के ज़रिए भी जब लेकर आते हैं रात को फिल्मी गानों का ये गुलदस्ता। और इस गुलदस्ते में से एक एक गुल और जो कलियां हमने आपके लिए छांटी हैं, चुनी हैं, उनका भी अपना एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही रंग है और अपने मायने भी हैं। तो हर लम्हे के अपने मायने होते हैं, हर पल का अपना एक मतलब होता है, एक जीवंत पहलू होता है। तो कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि हर लम्हे को खुलकर जीना चाहिए और इसे तनाव की किसी भी वजनदार चीज़ के नीचे नहीं रखना चाहिए, वरना वो वहीं घुट घुट कर अपना दम तोड़ देता है। तो यादों की बात करते हैं तो लम्हों की बात ज़रूर की जाती है और लम्हों का इस्तेमाल कैसे बखूबी करना है ये आप अपने जीवन अनुभवों से सीखते ही रहते हैं। वक्त हो चला है 3:15 और मध्य रात्रि के इस पहर में आगाज़ ले चुका है हमारा रोज़ आने वाला शो मिडनाइट मेलोडीज। मिडनाइट मेलोडीज में आकाशवाणी रेनबो 102.6 तक आज का संस्करण, आज का अंक मैं पहुंचा रहा हूं रजत आपके पास, आपके जरिए आपके जानिब। और इसके अलावा भी आप हमें सुन पा रहे हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए पूरी दुनिया में, पूरे देश में। आप सभी का तहे दिल स्वागत करते हैं और क्योंकि अब इस गुलदस्ते में बहुत कुछ है आपके लिए जो हमें आपको देना है, तो इस पूरे घंटे हमारे साथ बने रहिए। कोशिश करेंगे उन गीतों को भी छेड़ने की जो आप में से किसी एक का या बहुत सारे लोगों का कभी ना कभी बहुत पसंदीदा गाना रहा होगा। आज ज़रूर वो पुराना हो गया तो क्यों ना उसकी याद की जाए। मिडनाइट मेलोडीज में आप सभी का स्वागत, मैं हूं रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य

कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रहा 1,400 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उत्तरी और पश्चिमी भारत के बीच संपर्क को काफी आसान बनाएगा और देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगा। एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई खंड की प्रगति की समीक्षा के बाद श्री फडणवीस ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई यात्रा के समय को 8 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे कर देगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, आपकी जिंदगी के गीत संगीत सारे गामा लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर आकाशवाणी रेनबो पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में